0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हों।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष
2: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। हेलो हेलो हेलो, मैं यानी के वर्षा, आपकी आरजे वर्षा, और हम दोनों लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है क्लाइमेट काउंटडाउन। जी हाँ साथियों, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे अपने शुभ कल कार्यक्रम में।
1: तो सबसे पहले सभी श्रोता साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है। हमने कई उल्टी गिनती के बारे में सुना है, जन्मदिन से लेकर आईपीएल और नए साल तक, लेकिन ये क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है?
2: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट काउंटडाउन एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है और इसके बदलाव के लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमारे पास हानिकारक प्रभाव को उलटने के लिए बहुत कम समय है, और यदि हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो हम सभी को बाद में पछताना पड़ सकता है।
1: सच है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देश में हाल फिलहाल में आई तबाही को देखा होगा। बेंगलुरु में बेजोड़ बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड में बादल फटना, हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात होती है,

0: उनकी बढ़ती संख्या, उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, सूखा और न जाने कितनी ऐसी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होगी।
1: अरे मनीष जी, अरे सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश भी एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का अनुमान लगाना कितना मुश्किल हो गया है। सर्दियों के लिए आपको मध्य दिसंबर का इंतजार करना पड़ता था, सितंबर का महीना ऐसा लगता है जैसे जून और मई की गर्मी हो, और अब अक्टूबर के महीने में बिन मौसम बारिश, ऐसा लगता है जैसे मैंने सीजन की पारंपरिक समझ खो दी है कि मौसम कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है।
0: हाँ, हमें हमेशा से सिखाया गया कि चार मौसम होते हैं, लेकिन अब मौसम के बदलते मिजाज को देखें कि ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार कौन सा मौसम गर्मी का है या कौन सा बरसात का है।
1: सही कहा तुमने, नेप्स स्पेयर्स समाचारों की तुलना में मौसम से संबंधित खबरों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो मनीष जी, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मौसम में बदलाव सामान्य हो, मौसम स्थिर नहीं है, तापमान और वर्षा में ये दीर्घकालीन बदलाव जलवायु परिवर्तन की घटना का एक हिस्सा है?
0: इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, बस इसलिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम क्लाइमेट काउंटडाउन। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आप जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव है। इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन की परवाह क्यों करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं।
1: मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन से अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। यह प्रकृति की इच्छा है कि यह कैसे विकसित होता है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तो यह सरकार का काम है, हम लोगों का नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति में बदलाव का कारण मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के मुख्य संचालक हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग ही इस परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, और हम सब मिलकर इस कुछ सरल क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इस समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे और कुछ और बातें करेंगे पर्यावरण और उसमें हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए सुनते हैं।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: तो यहाँ हम एक बहुत सी दिलचस्प कहानी के साथ वापस आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का एक बार पुनः। हमारी कहानी दो किरदारों से बनी हुई है, एक सनी और उसकी दादी की इर्द गिर्द घूमती है। ज्यादातर लोगों की तरह दादी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बातें नहीं समझ पा रही है। वह मौसम, जलवायु और पर्यावरण के बीच के अंतर को लेकर उलझन में है। वह ये सोचती हैं कि उसके समय में चीजें आसान थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को।
3: बेटा सुनो, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि पिछले 75 सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन है। क्या हो रहा है? यह सामान्य से कहीं अधिक गर्म है, और मुझे याद नहीं है कि सितंबर में पहले कभी इतना उच्च तापमान दर्ज किया गया हो।
4: अरे दादी, पृथ्वी अस्वस्थ है, उसे तेज बुखार है, और संक्रमण के लिए हम जिम्मेदार भी हैं। मैं पिछले 7 वर्षों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिछले 16 वर्षों में मैंने इस तरह के गर्म मौसम का अनुभव नहीं किया। निश्चित रूप से ग्रह अधिक गर्म है, और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जलवायु अब बदल रही है। मेरे शिक्षक कहते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
3: जलवायु परिवर्तन? अरे जलवायु परिवर्तन

0: दिन क्या है और ये मैं कितना गर्म महसूस कर रही हूँ? कैसे संबंधित है ये? क्या जलवायु मौसम से अलग है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना।
1: दादी इधर आओ, जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने ईबीएस शिक्षक ने मुझे बताया कि किसी स्थान का मौसम वातावरण की अस्थायी स्थिति है, जैसे आंधी या गर्म दिन जो कुछ घंटों दिनों या हफ्तों में होता है। जलवायु एक स्थान के औसत मौसम है जो लंबी अवधि लगभग 30 साल या उससे अधिक तक फैला हुआ है।
0: आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मेरे लिए समझ से बाहर है, कृपया मुझे इसे सरल भाषा में समझाएं।
1: अरे मोरी प्यारी दादी, ठीक है अब ध्यान से सुनो। मौसम की स्थिति अल्पकालिक परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन घटना है जो किसी स्थान के सामान्य मौसम को लंबी अवधि के लिए संदर्भित करती है। मनुष्य कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे पृथ्वी की जलवायु तेजी से बदल रही है। ये परिवर्तन मौसम में व्यवधान पैदा करते हैं। और तो और दादी, गर्मी की लहरें, बारिश में देरी, अचानक बाढ़ आना, बार बार सूखा पड़ना, भूस्खलन और फसल खराब होना, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है दादी। मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं दादी।
0: अरे बेटा, अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
1: ओहो दादी, यह तब होता है जब कुछ गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो जाती हैं।
0: रुको रुको बेटा, यह कैसा माहौल है और अब यह कहाँ से आया?
1: अरे दादी, वातावरण गर्मी को पकड़ लेता है और उसे निकलने नहीं देता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। यानी पृथ्वी न ज्यादा गर्म रहती है और न ही ज्यादा ठंडी रहती है। यह जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे बनाए रखने और हानिकारक यूवी किरणें को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।
0: हर बार जब आप कुछ कहते हैं बेटा जी, तो आप उन अवधारणाओं और शब्दों का परिचय देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। सरलता से समझाएं, मुझे यह भी बताएं कि यूवी किरणें क्या हैं।
1: ओ मेरी दादी, यह इतना जटिल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जब बहुत ठंड होती है और आप परते पहनते हैं, एक ऊनी ब्लाउज, एक स्वेटर और फिर एक शॉल। इसी तरह वातावरण को उन परतों की तरह समझें, एक कंबल जो इसे बचाने के लिए पृथ्वी को घेरता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑर्गन और नाइट्रोजन। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी से दूर रखता है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करता है। यह एक सुरक्षा कवच है, आपकी शॉल की तरह, जैसे आपका शॉल है उसी तरह। क्या अब समझ में आता है?
0: ठीक है बेटा, तो वातावरण, मौसम और जलवायु सभी जुड़े हुए हैं और एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होता है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन सनी बेटा, मुझे कुछ बताओ, क्या अलग अलग मौसम जैसे वसंत, गर्मी, मानसून, सर्दी और शरद ऋतु में भी जलवायु का हिस्सा है?
2: सनी एक धैर्यवान लड़का था। दरअसल उन्हें इस बातचीत में मजा आने लगा था। एक बार के लिए उन्होंने दादी से ज्यादा ज्ञानी महसूस किया।
1: हाँ दादी, वे सभी जुड़े हुए हैं। मौसम एक वर्ष में औसत जलवायु स्थितियां होती हैं, जो वर्ष के हफ्तों और महीनों में होने वाले कुल मौसम के आधार पर विभाजित होती हैं। मौसम वह है जो वातावरण की परिस्थितियों थोड़े समय के लिए होती है और मौसम में बदलाव से जलवायु में परिवर्तन होता है जो कि 30 वर्षों या उससे अधिक समय में किसी स्थान पर औसत मौसम की स्थिति होती है।
2: दादी अपनी पोती से बहुत प्रभावित थी।
0: अब जब आप इन सब बातों का जिक्र करते हो बेटा, तो यह मुझे समझ में आता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी हम अक्टूबर के महीने में अपने कम्बल और सर्दियों के कपड़े निकाल देते थे, लेकिन अब हम दिसंबर के मध्य तक मुश्किल से सर्दियों के कपड़े पहनते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है?
1: इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है दादी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मौसमी परिवर्तन अधिक अप्रत्याशित हो जाते हैं।
0: सनी बेटा, मुझे एक बात बताओ कि क्या यह जलवायु परिवर्तन केवल शहरों को प्रभावित कर रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं?
1: दादी, जलवायु परिवर्तन ने किसी को नहीं बख्शा।
3: फिर लोग इसके बारे में अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं और कोई समाधान क्यों नहीं देख रहा है?
1: दादी, मुझे लगता है मैंने आपको एक दिन के लिए पर्याप्त जानकारी दे दी है।
0: नहीं नहीं, लेकिन माहौल के बारे में और बताओ।
2: लेकिन दादी ने जोर देकर कहा कि सनी ने जितना साझा किया था कहीं अधिक वह अवशोषित कर सकती है। कोई विकल्प ना रह जाने पर वह समझाने लगा।
1: दादी, वातावरण 5 प्रमुख परतों, तापमान और पृथ्वी से दूरी के आधार पर समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर एक ओजोन ढाल या परत है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है।
0: ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो मैं मान रही हूँ अब हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है ना?
1: हाँ दादी, ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि यह मानव त्वचा जैसे जीवों की सुरक्षात्मक परतों में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये किरणें हम तक कैसे पहुँचती हैं?
0: अगर मुझे इतने जटिल प्रश्न का उत्तर पता होता तो क्या मैं आपके साथ यह बातचीत कर रही होती चतुर साहब?
1: दादी बहुत सही, ओजोन परत पतली हो रही है क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है। वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी के रूप में जानी जाने वाली गैस छोड़ते हैं जिससे पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में गंभीर परिवर्तन हुए हैं।
2: दादी चिंतित थी। उसने जवाब दिया कि यह इतनी गहरी चिंता का विषय है तो लोग इस मुद्दे पर अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
1: मैं मानता हूँ कि इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्या करें दादी, लोग उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं।
2: दादी अब बहुत डर गई थी। वह सवाल पूछने लगी कि
0: हम इस मुकाम पर कैसे पहुँचे? सनी बेटा,
2: उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पुरानी और वर्तमान पीढ़ियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया। दादी स्तंभ रह गई। वह सोचने लगी कि और क्या किया जा सकता है। वह सनी से बात करना चाहती थी लेकिन तब तक सनी के ट्यूशन जाने का समय हो गया था। उन्होंने दादी से वादा किया कि वे हर दिन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और वह उन्हें बताएंगे कि उनकी पीढ़ी अलग तरीके से क्या कर सकती थी। सनी ने अपना बैग उठाया और चला गया। दादी अपने अखबार में वापस आ गईं और सबसे गर्म दिन पर समाचारों को समझने की कोशिश करने लगीं।

0: दोस्तों, दादी और सनी की बातचीत ने वास्तव में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारे कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हमें इस पर ध्यान देना और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
1: अरे वर्षा, न केवल तेज गति से जलवायु बदल रहा है बल्कि इस तरह की समस्याओं से पृथ्वी ग्रह को अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्राकृतिक सुरक्षा से समझौता किया गया है। ओजोन परत, जो कि वायुमंडल की एक पतली और महत्वपूर्ण परत है, घट रही है। वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पौधों, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। अनियंत्रित मानवीय कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन हुए हैं, जिसका परिणाम पहले से भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बुरा हाल होगा।
0: प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आइए हम इतने निराश ना हो, जबकि स्थिति गंभीर है। यह निराशाजनक नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमारे पास अभी भी अपने कार्यों को उलटने का समय है। हम जिन सरल क्रियाओं को अपनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनके जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक परिणाम हो सकते हैं। हम में से हर एक छोटे छोटे उपायों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान दे सकता है, जिन्हें हम अपनाते हैं।
1: सकारात्मकता के लिए धन्यवाद वर्षा। हाँ दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करने और समाधान के बारे में सोचने का फैसला करते हैं और नई और पुरानी प्रथाओं से सीखते हैं तो हम जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी। अगले सप्ताह उसी समय ट्यून करना ना भूले क्लाइमेट काउंटडाउन के अगले एपिसोड में। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा
0: 9425141726। और श्रोताओं, हमारा पत्र लिखने का पता भी है। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
0: हम अभी के लिए आपकी छुट्टी लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं के रेडियो बुंदेलखंड पर बने रहें। सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। तो साथियों, चलते हैं इस कार्यक्रम से, फिर होगी मुलाकात अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन,

0: उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपके आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हां श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं, इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप। इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा, प्रतिभा, योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है, ऐसा होना ही नेचुरल है। लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं, वही व्यक्ति माफी मांगता है और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरे को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से

0: सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रित रहे और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 9425147126।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए नमस्कार।
0: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, को बोल रही?
2: पार्वती वंश का सगन कुमार से।
1: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
2: दीदी क्या बचाती? दीदी कहा सुना दो गीत।
1: हाँ, कौन सा सुना दे?
2: बिल्कुल।

0: खेल जाती है संगीत नगर जाओ भाई दीवानी में बारी मार जाओ संध्या सागम
1: संध्या सागम को वो
0: हाँ
1: बिल्कुल यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
0: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
1: तो ठीक है पार्वती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
0: दीदी सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद सुना रही।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्त आपसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोकगीत सुनने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तो मज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगेत और आनो। हाँ वही लोकगीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे लोकगीत। ठीक है,
0: ठीक है, नमस्कार।

सखियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को। और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 9425147126 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने के दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी मातादिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपन आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

लाओ मोए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सकें, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी

तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवार जी।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मेला री उड़जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़गियावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों आज हम आप सब जन को सुनाओ थे श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं राम कुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ तो आपको एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचात के देखती रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खन लुआ के आ रहे थे, जैसे लुआ के आए तो हमारे मित्र मिल गए। उनने पूछी कि तीन चार जने आ रही, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। से हमने कही

ये बोले कि तुम तो जा बताओ पीली साड़ी वाली यहाँ, हमने की नहीं, बोले नीली साड़ी वाली, बोले नहीं, बोले फिर कौन, हमने की है, अरे गंजले ठाकुर दई हमई खा, गंजले ठाकुर दई हमई खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा में, नैन धोई कजरा रे, गोरे है गाल।

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है। ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

हाँ हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल, हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल और लाल लाल।

ओहे लागो हे नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, श्रृंगार गीत को आनंद लो है। इस श्रृंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

भौजी सदी मोर मोटर की कर तोला सिंगार मन नहीं भौरा। हाँ भौजी सदी मोर मोटर की

मन कहिया के जे ठंडुआ हो गए हैं बीमार मन गई भोरा हे भौजी सजी मोर मोटर की कर सोला सिंगार मन गई भोरा भौजी सजी।

बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मोर मोटर सी करसो लो सिंगार मनोरंजन ले भोरा। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

कंद फूल कंगनन में झूले गोरी के गालन खोचू मैं, कंद फूल कानन में झूले गोरी के गालन खोचू मैं।

0: देखे कजरो आकारो गोरी धना जादू सदगो।
1: देखे कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को दो जाबे की अनुमति। नमस्कार।

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से, जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। और कहना
1: एक तरफ

0: चांद पीटना मत चमक, ए चांद पीटना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम किया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज वाले से भूल लगे बताए कैसे, यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना।

0: संभाल जो चाहो जिंदगानी में, कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
1: पानी पिलाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, पानी पिलाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, उड़ ले करके।

हो गया भाप। हो हाथ में लो तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप, हो हाथ में लो तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि, हो भारी हैरानी, हो तन मन की

अगर होती है तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम सिम।

0: देखो तो आज क्या है किचन में, ये क्या? फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं, कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। मुंशी नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
1: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
3: कुछ करिए मंत्री चमकी।
4: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोई से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोई।
5: अरे मंत्री चमकी, आप
4: बताओ रसोई, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
5: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, गोभी के, गाजर के, लूसी में लाल टमाटर के।
4: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
5: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
4: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
5: ये लीजिए महाराज।
2: वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
5: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
5: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
4: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
3: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि हमने तो गाना ही सुना दिया।

मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चूहे में नई नई चीजें खाने से मना

0: तो सुने, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम।

0: अजीब तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चिंकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
1: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
2: तैयार।
1: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे, लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
0: उगती है जमीन के नीचे, लंबी पतली सब्जी लाल।
1: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है।
2: समझ गया, ये है गाजर।
1: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। यो, खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
1: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
0: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान।
2: क्या समझ चमकी, मैं बताऊँ?
1: अरे गुगी, अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
2: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
1: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
1: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छेड़ो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। और सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है, बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
3: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
3: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
3: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
4: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
4: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
4: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
5: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
5: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्तों सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
6: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
6: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
7: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
5: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को ऊपर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियाँ खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
8: बाय। मजा आया ना दोस्त।

दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बात

0: बातें करी गई है भाई। हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी, हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है। जैसे तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते लोग
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर ले। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं? मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए
1: जी। आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हो या छोटे बच्चे हो, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे ये एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है वो के अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेगी चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उसके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचे में तनक टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करके चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

प्रेम भाव के नीचे भगवान वीरन तज पाखन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। प्रेम भाव के नीचे भगवान वीरन तज पाखन।

0: जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लोहावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
2: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहां पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
3: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान

0: उनके जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तू से मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुहार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अघनाशे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए, जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी हैं, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी आते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जैसे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है।

0: और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक जी, पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है, बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो अपन यही के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो अपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे, हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी के उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है, यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो खंगारों का है। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा,
2: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का, सो सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुमार की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ई वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते ही कहानी को, लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुआ तो राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हते बाणिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बाणिया के।
2: हाँ जो दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती है सो अपने काम काज तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खुद चले जा गए।
2: दो ही करे
1: दो ही करे शिकार भी अपनों घोरों मस्के भी अपनों घोरों मस्के।
2: हाँ
1: अब जब बन में पहुंच गए
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली बस शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए।
2: हाँ
1: अब कल को दिन बल्कि तुम्हें फिर करना है।
2: अच्छा
1: तो कल के

0: आओ
1: अब राजन कौन सुबह से बीजन है अपने बानिया कितना सिकत बीजन
0: अच्छा
1: हो बी है बादशाह बीजन और बादशाह दोनों जने हो कह के राजा हो बादशाह बस बीजन है जिसे बार मार बनवाए गाड़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कले कबैया कांखे जाने छटे कले ससुराल हो जा रहे
0: अच्छा
1: अब जब नाव भोगो से नाव खून रख तो गांव भर को तो फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सतकरा है फलाने के पक्या से
0: जा सही कही आपने
1: नाव खून सब पतो है तो नाव खून तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
0: ऐसा
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए अब राजन के बादशाह के बनने सो बादशाह के बार बने सो बादशाह बोले बोले कर ले कब बोले कर ले ये राजन के राजा बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है हमारा हम किसे चले जा रहे अरे बोले कर ले राजन के राजा आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउ की है नहीं है
0: अच्छा
1: हाँ तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जन हो गए
0: अच्छा
1: के नाव होगा बादशाह हो गए बीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई बस अब चले ससुराल के लाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक ज्ञान कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई और जब बादशाह की ससुराल को गल गई
0: अच्छा
1: गली में बटी लगी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी तो बीरन का पानी पीवे के लाने तो बाने बीजक बाँचो
0: अच्छा
1: बीजक बाँचो बामे सू में गलिया अलग अलग बीरन हो बदमाश बीरन बदमाश हो
0: अच्छा
1: तो बीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावली में वह बीजक को भरा जाओ
0: ले उसका
1: अगर हमारा गाय जब बीजक खून जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बाचे ले से सम छूट गो इसे कह हमारे जी ससारे चलेंगी
0: चलेंगे
1: तीन हुई
0: तीन हुई हाँ
1: जा तो बीजन बदमाशी के रहा तो बस अब राजा पानी पी लेगा तो राजा ने पानी पिए जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो रहा तो राजन ने अपने खोबन की उलीच उलीच के बाय धो जाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो बाय सो बाने उनमें प्रधान पूरे लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो वो लिखा ले क्यों वे बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल पुरखन को बीजक तेने बता दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते हैं तो बोले कल उनकी शर्त लग गई
0: अच्छा
1: बोले कल जो पहले आगे विदा करा के वो जिस बाउली पे ठहरे क्या जिन किसी को भी जाए
0: सही सही
1: तो बस बेहतर तो भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई का नाउ बोले कल जी राजन के संग चले
0: सही है
1: अरे हमारे वर्ग के संग का चले हम सेठ आदमी और राजन के संग जी और हेल्पर चलते हैं कल ठीक है सो राजन की कुमार और सुताई का कद्दू जने जा रहे भी अपनी ससारे चले रहे और सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास
0: अच्छा
1: गुले कर ले सुताई का गुले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सादा शरीर से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माँ पानी अपन वन में हेंगे बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के बोले कर ले हो महाराज सुबह का खैबर पर चढ़ी सुबह पर देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी सो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची तो बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी उतर होगा
0: बिल्कुल
1: तो बोले कल्ला राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही।

0: बन पानी की बगली नहीं देती है, पानी जमी हो गयो थे। बोले कहने चल चल जा, सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल गया। अरे खुली जाए सुबह जन में दो पाई खुली से जित गई थी। हाँ फिर बाहर आराम से आराम से दिन में चले गए। काकुस्ता आते तो ध्वन वाली लड़की राजा ने खुद भी आई थी, वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी। सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कहना सुताई अक्का, बोले कहना कहिए राजन के राजा। बोले कहना उस तालाब में पानी ऐसे ठीक है तुम लिया। बोले कल हाथ जाके ना पूछे पानी पी लो। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले। बात है क्या, क्यों पानी जो मचो लिया होते ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचो सचो भर लिया है और हम खुद प्यासे मर जा रहे। अरे बोले कल बकरा भी पानी वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल सुधायक का बोले कल कहिए राजन के राजा। बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे ताला ताए को। बोले कल कहो उनने कही

0: अच्छा नाव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा तो उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: ये नहा रही बा बोल रही है

0: सिंचाई आपका बोले कल्ला राजन के राजा।
1: हाँ।
0: सुनो हमारी बात, अभी से बोल देना।
1: सही है,
0: अभी से बोल देना। बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं?
1: सही कही।
0: बोले कल्ला नहीं, अबे तो हम और बोल देंगे।
1: हाँ।
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ।
0: भूले

0: गलियां लेखो बाता दियो से लवे काहू के द्वार दी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वार में
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए।
1: हाँ।
0: अब वह जल के भीतर गई। अब इनको समझ में नहीं आई गली के जाए। इनको बदन सही है क्या सब।
1: हाँ।
0: मुंह करने मायक है तो पूछते नहीं इंतायक है। कई की अब जाइए से बताया।
1: हाँ।
0: तो निकल बाले माँ शंभा बोली।
1: हाँ।

0: जावाद मिल जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ वन मिली ना बताई ना वन बदन काड़ो जल जमीन में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पास आ गीता जी बस सावन में है किसी गली तो पूछ ही गई गली पूछ के उनने घोरो बढ़ाओ सो गाँव के लाने तैयार हो गए। अब बानी सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जात तो गड़बड़ हो जाएगा।

जल्दी पल्ली सपरो और सफर खूर के और बाप ने जेल चली दोनों जी हती से जाते हैं भवन द्वार में छोटा लक्का को देखो तो ससुराल सुबह द्वार है अड़ी उनमें अब पहुंची घर पहुंची घर से भी घरवाओं को बन रहा अब भाभी से बोली भी

0: अब भाभी मन से उत्तर दे रही है।
1: अच्छा,
0: अब भाभी को उत्तर दे।
2: हाँ।

0: बिल्कुल क्या तुम
1: भागोगे ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज रात तक तुम न बनाओ आज हम बने
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दे के लाने तैयारी की तैयारी कही अभी दो महीने कही चला
0: अच्छा
1: बोली कर लगे हो अपन को कौवा गेल गवार बनाए थी
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी यहाँ
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अभी खुलो हाँ में तो सलाह दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की तो वैसा वाती सोने गंजन की भोजन बने भोजन बना के और अज्ञा दे गई भोजन के लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक ले चल खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने थना में जवाब ठोको
0: अच्छा
1: हाँ ठोकने ठोकने ना तो भेज कैसे खोलेगा
0: सही है

0: तो उन्होंने काशी सरकार के मुँह अब अभी खुलवाओ जय है।
1: सही कह
0: रहे बब्बा ने बात खोली सो बोल समझ गए उनने माँ ताकी मारी सरकार के कान पर झटपट जो कश्मीर राजन तेजी से बाप बांधी और बाप नहीं बांधी और बस चाची मारी जो कर बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाग मैंने अपनी चाची धोई वो आपकी धोई और फिर मैं आया बोले कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूर कस के तैयार हुए इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जा रहे तो बस बेहती सो तैयार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कसो सुबह ऊपर को पले चौबाने पीटने कस जाओ।
1: अच्छा
0: वो पले चौक दिन तो गई आगे बड़ी आगे
1: ये
0: विजय कैसे सवेरे तो बस जो राजन का हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल तो क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया गया। अच्छा कस तो उन्होंने भज्जा छोड़ छाड़ के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी बाहर निकल उठे। तो बस बेहतर सो अब हटे बेसो निकल के और बस फूक करी तो भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने रोहा दाऊ बनी रेशम दो।

0: ये तुमे के पारो ऐसे पोती छाजने रे जी। अब बाप नंगी सो गई थी।
1: अच्छा
0: बदुआ।
1: हाँ
0: तो नंगी ने कही
1: हाँ।

0: तो जी उन्हें शंख बजे से साधु जग बम घर भूत अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है कि का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जाए विश्वना का जाए
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास मिल भी गई। अब बात फिर की दो भाग कह रही है।

છે લાડા કી વાલી એસો નોવરી કે ધ્યાજી. અરે એસી સાસો કા કામ કી હતી તેરી કુખન બાંજઈ હો જાતી. और वैसे सपूत जाए तो लड़की होती तो पड़ोस मिली के ब्याह शादी कर दी थी. तो वो रखी ये तो गड़ गया है ना सुबह पटक थार और भी भगिया जब थार पटक के में भगिया सुबह अपने वही मैं रात को समझ गया कहाँ जा रहे मैं सलीवर हूँ सोने घोरों मस्को उस चलिए.

तो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर ले और सब बात को बाहर आओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे हैं। ठीक है तो भाई बिहार के बच गए, खाना खाओ, खाना खा के अपनी नसों ने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई गए, उन्हें खाना पीना सब और महीना भर के लाने रख दो। अब जब जो घर चले गई बस बिहती सो अपनी हकावे बारे हती से जैसे गांव के बारे करी तुमने मार जताई तुम्हें भक्के छोड़ के अब खुद उन्हें हकाई अब सुताई अब काल है खबर जी ने हकाई सुबह हका के होगा सब कहीं ऐसी वर्ष चली हुई तो शाम हो गई से बंगा को पेड़ हो रहा है उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के लिए अब वो निकल ले सुनो सुधा का वो निकल ले का कल पापी को ही छोड़िया नहीं रुकता है। अब बस सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सो सुता अक्का से कही के सुता अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है तो पति लगाओ तो सुताई का अक्का गए तीन पात में लगा लिया एक अपन को एक राजन को एक रानी को तीन पात में कहा खोलिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर भी मारे सो रानी की फार के मार फिर गए। अब मैं सोच पातस लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि जो भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का कहें से जिस घोड़े की पछाई की ये रखी ये भगत रहा बडोर बजी थी तो बस छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को कि ये भगे तो जब ये तीनते समय यहाँ का हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचु किया ले तो बस उन नेते से घोरो भंसाई रात भाई वो बड़ा सुबह तनो वो तने बडोर तनी दो सौ नेक चावा को अठो को घोरी में सुबह दूर पीती सो उनमें कही रहते हैं रानी मैं

केना दिखती और फल में बुझा गई हमें और हम न जई गाँव के रहे न बई गाँव के रहे अब इसमें नलवारे कैसे चले गए। वे अपने भवन को चले गए और रानी ने अति से कहा कि नस्खो वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाओ थी नस्खो हकाओ थे रानी तो हकस हो गया से कचुवती से राजा गिलंड की बाग में भी जा रहा जा रहे सुवन ने भैया घर वाले ना के तूपी माए की बोलनिया तूपी तो बस भी अति जो रानी वो तो माली हटी से माली गोली गोली कर ले अरे कौन कहा की पाप नारी कहती है तुमने एक उम्र रानी ने वो मालिन खुद दी तो नारी जी तो राजी ने की बहू में भीतर कार में बाग में बीरा दे जाए अपने अभी तो राजा की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटा तो नहीं हटी हुई तो बस भी हटी तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कौन रहे से ऐसे कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान तो एक दिना अब उनकी बेटी हटी राजा की यानी जम दूध नाव तो का नाव तू बेटी जम की जम की नाव तो बेटी को सो दिन में दो फूलन की तरह के लगती हुआ सो अमालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन खुल ले जावे सो राजन ने हकी सोची के अमालन तो इते आओ तो हम आज बगीचा घूमी आए सो बगीचा घूमन गई भी सो तो बार राजन की लड़की

वही राजन ने सोची कि जीतु काछी माछी की तो या है नहीं है तो कहू राजा की लड़की तो जैसे कैसे अपने घोड़े घर पहुंची गलत पहुंचे शो गलत पहुंच पाच के उनने कही अब्बास से कही मालूम से उनने कि माता जी रोक तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाने दो तो उनने डाली उन्हें लगाई हम राजा ने अब बादशाह ने अति से राजन की पिया नहीं होती बाबन नहीं होता कंकु अभिन नहीं होता पिया को तो राजन ने सोची अब उनकी रानी होती बादशाह की तो अपने उन्हें थाली लगाई जो उन्हें परसु बिना की हवा कर रहे बिना की हवा कर रहे जाने उनकी बादशाह की तो बिन्ने सोची और बिन की हमारी खुलवा लिया उसी वन में ना छोड़ी आती भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी तो बीरन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है तो नाव से पूछी जा हुआ बोले क्यों खवास रखता बोले कले कहिए राजा कले कारण कहा है इनको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया है और भगया है तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीरन ने सजो और पहुंचे बोले कल चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी तो जो दुख तरह छोड़े थे बड़ी दुख तरह ये गए दोनों जने नाव नहीं गए वे दो ही गए दो ही गए सो बोले कल अब उनने हती सुबह गाड़ी व पीनस की जो रास्ता थी बंद है ये सो मालिन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में उड़ गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतरे जाके उनने कहा किस्सा करो कदीरा जो जन्मे गए सो उड़ने भैया मालिन ने उन्हें गरी आई बोली कल्ले क्यों रे कहा के हो परदेसी कैसे फिर गए तुम जगह बात और हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले कहा आराम से मालिन को साड़ी तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की ठीक है अरे कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कुछ जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर जगह छाड़ी कही तो माल लेती से उन्हें पहुंच राजन बोली कल एक दो घोड़े वाले आए और भी जाके और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दिया बगीचा को तो उनमें छिड़ गया तुमको राजा बुला रहे बोले कर ले हौसा जब तभी ऊंची हती भीड़पुर की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तुम मुँह काट लीजिए और हमसे बात करे तो हम मुँह काट लें बोले ठीक है सुबह गए राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ही बोले बैठो अब उनमें हतो एक बीजक राजा गिलंद कि अगर जो बीजक जी ने पहुंच जाए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे तो अब उनमें अति से जब सलाह हो गए बस सका से काम लगाओ उन्हें अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कल्ले नहीं ये राजा गिलंद का बाग कटे चल जी और जो मकान गले चल जी सुबीर ने कहते ठीक है सुबीर के बच्चे जो काम लगो सुबीर अपने मजूरी खोने की जावे जावे से बाहर आने जो बबीर की अति से छाजे पे वो जातन कर रही थी जो बीजक लाई थी बबीर जब वो लोटा के कर रखती जातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खून जो बादशाह ने बच गई हम ये डारा सुबह गए डारा सु आराम से गए डाल दी के लाने तनक तसरा में से गिलाओ पहुंच बेटी में गवा में जो राजा गिलंद की लड़की तो उन्हें अति सो अभी तो खिलाड़ी है तो उन्हें गोल लोटा दाओ गोल लोटा उन्होंने दाओ

0: सुबह ने फल ले लाओ, विज्ञान की बल्ला के सुन अवल्य लौटाओ भी बाग में पहुंच। सुबह सुनने खड़ी भेजे छिया पकड़ लिया, सुबह जब ये जाता करें महाराज तो नहीं है अब दुनिया में लगाई थी वो बीजा, वो बीजा कुन ने वहां से लाओ पूरो करिए कब दो मिल रही, दो मिल रही सुबह कैसे लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई तो अगर तुमसे राजा बात करे तो हम काट लो, हमसे करे तो तुम काट लो। सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए, चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियान। एक दिन आते बोले खिचकी आके पहुंचे गए सो राजा ने कही, बोले कर ले कही साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो, बोले कर ले के दीखी सुनने फिर लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी ने दी हती बात तो हो गए।
1: देखो दोस्तों जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तकनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

सुनो तो जी काके रे, अपन खा जी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काके रे।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे, तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें कि आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही, दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो एक गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सम बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह दादा
2: कहना से पूरे पतो गया कहना दिलाती गंगा कैसी नगाड़ी।
1: अबे आप दादा का कर तरफ
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने देश में अदर
1: और
2: वर्कर हम बस किए काम वाम हम कहते हैं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार

0: भगवान है सर। कहते बेचार विज्ञान के तो जैसी समस्या है अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा है कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का
0: बुढ़ापे के तो देखो ना खाना मुराद एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नींद नहीं पाओ घूमने फिरा हर एक बात की मुश्किल दिखा दो
1: और वैसे और समस्या है अपनी।
0: अब और समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें मोड़ा हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
0: पूछा थे अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
0: सेवा खुशामत सब करा थे जी बैठे अब बैठे तब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर लगे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
0: रात में झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा से खाए तो ठीक है अरे कछू ना कछू ना तो दस रुपए दस उसको तो खर्च किया ही आदमी को वहाँ मान के चलो कछू ना कछू दस रुपए उठा के सही जाते हैं।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था
0: दो बच्चे उनका दिमाग लगा दे सुझारे सुझारे अपने छाने में चले।
1: अच्छा वो अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी जैसे का आप बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी
0: का होती नहीं है तुम है जो कागज है जो जो जो नहीं बाँच पा रहे हम मतलब और उसी नहीं दिखाते नहीं बाँच पाऊ मेरे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकते हो खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है अभी
0: खावे पीवे कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है
0: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत इज्जत मिल जाए और पापा जाना फैली पापा जी जाना फैली के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा आदमी हमारे वाले बच्चे जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जठाने न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में
1: तो अपन कहा के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अब की सब खा का
0: जब जो हो चाहिए तो शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम रहे तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम रहे तो काका अच्छो हो सका
0: प्रेम अपनी मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जीव काम लेगा प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना
0: उज्जे पैसा रहे जो मतलब झगड़ा को काम निकल
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चट जी और कैसे रहें चट जी आप का कर जाओ सब जनन से आपको का के वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात बड़ी बात शुरू से आप
0: यात्रा ना कछु
1: यही बात है आप यही बात पूछना चाहते
0: हैं
1: बता दो आप कि आपका क्या वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की ऊपर है बाप मताई को छोड़ा तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी जो मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है जेबे बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे मिले तो जाकर आ गए जो मतलब है चले जाए पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे नहीं मिला तो कहा जा रहा है वो चीज खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं जाए पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहू था
0: जी चाहू के आराम चाहू बस मिल जाए पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाऊ गए लड़का वाले अपने वाले बच्चे को समाज खाने दिए तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उनमें खाद चलाते
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अब हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत को और ये गांव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा।

के गोबर मंगाओ, यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो, सवई पंच भैया सुने।

तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हर रविवार को लेके आउ थे कार्यक्रम को सुनो जी काके रहे। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछतगेला के पास ओछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: ऊंचे
1: पहाड़ पर बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो आपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप कैसे फोन लगा उतरा बुक
2: है। ठीक है सर,
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पास ऊपर वाले के पास है और सब बहुने वाले हो गई पानी आने लगा।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी मंडली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बताते हैं आप?
1: गीत कोई गाओ थोड़ा। हाँ बोल याद नहीं आ रहे।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए बेरी हवा

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। तो जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो क्या एक बार

के देख दिगंबर शिव शंकर का और भालचंद मुस्काए हैं और टपका अमृत बिंदु धर्म गोशाला पर था।

नाद जा भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। ओ बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने त्रिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छवि मुख चंद विराजे।

0: भोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम चला।
1: हेलो बुंदेलखंड नंबर 10 है।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी,
1: नमस्ते।

0: भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथे मन से जो कोई प्राणी नगर ओछा आवे
1: जी,
0: वही भजन सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे चलते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 94.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतना ही संपन्न होते है। सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो इस नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप उन्हें इस पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन होवे को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदे।